बिल्कुल जी, और जितने हमारी उर्दू लिस्टर हैं, उर्दू सुनने वाले, उससे भी यही रिक्वेस्ट है, यही कहता हूँ मैं कि जितने भी हमारी लिस्टर हैं, उससे यही इल्तिजा है कि आज हमारी तिलावत का कंपटीशन है, हमारे साथ तिलावत में आप लोग बरहा ले लें, शराकत कर लें और आए हमारे साथ प्रोग्राम में। इंशाल्लाह हम आपको फुल सपोर्ट देंगे और अपनी बच्चों को मौका दें, यही क्योंकि हमने जोइजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोग्राम लॉन्च की है, अपने बच्चों को लॉन्च की है, और हम यही चाहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको मौका मिले, क्योंकि कल मैंने नाथ वाली कंपटीशन का मुकाबला अनाउंस किया था, लेकिन अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया। और बिल्कुल इसी के साथ जो बाकी रेडियोज पे मैंने किया था, तो तकरीबन 50 से ज्यादा ऑफर्स कॉल्स मैसेजेस आए थे, और बच्चों की तरफ से वोटिंग हुआ था जिसमें टॉप पोजिशन रहे। इंशाल्लाह कल आज फिर कुछ चैनल्स पर मुकाबला, फाइनल मुकाबला है, तो फिर आप लोग भी आइए टांग से, इसके साथ साथ जो है ना दबंग रेडियो से जितने लिस्नर है, वाना से जितने लिस्नर है, तो आए सब हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर लें।

0: खबर।
1: ओके जी जुल्कर्नेल, जुल नौरेन, जुल्फिकार, जुल जुल जुलियादीन, माशुमान दी जुल्किफल। ओके जी जमा द स्टैंड होम दे टूल द सलामुना अल्लाह दी रातन ने कमल लुई की।
0: हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे,
1: ओके जी अस्सलाम वालेकुम रोशनी हम सिंह इबाई प्रोग्राम औरुदो नाइला सरा संप मुश्किला बांदी आवाज सफा नराजी। ओके जी दस खाकोड ननु मैं भी इस खाकोड की आवाज सफा नदरजी ठीक शो बिया तासु जमुंग द रेडियो वतन दलार प्रोग्राम औरी दले शे पनबे शार यार्ड बांदी दुष्पी दल सुनवाखले तर द यवुल सुबह जो पूरी ठीक शो खुर अगा आवाज बतास तो बिल्कुल ठीक ठाक गबीन जबीन दर्जी।

0: तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर जी, संगे खै
0: जबिल को जी ठीक ठाक हम तासु संगे
1: खै दे शुक्र दे तास खै
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी तासु दुआगा री दिमाग सरा दा खुले आवाज दे चा दे ओ दे चरता ना
1: कासम खबर कोम दे बा जवर ना
0: कासम से बरा सर खबर की दे बा जोड़ ना बा जोड़ के कासम से दे कम जीना खबर के
1: मना बरंग ना
0: अरंग बरंग चवरता वाई का ना
1: माशाल्लाह
0: माशाल्लाह बस मुंग आखिरी आधा सिले पटे देखा ना सिले पटे वर्त हुई बस दादा कजी पूरी दरगले मखवाने में दरगले वेम सिले पटी पूरी दरगले मखवाने में दरगले कासिम पाकिस्तान प्रोग्राम के हर किली पपेल असल बांदी कॉल करे देखा ना
1: सर जी
0: खुशहाल शी खुशहाल शी अल्लाह दरा तलुई सड़े का जी कासम से तपूस पुख्तर ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान हवाले सर बिल्कुल जमुंग न कबूल शी
1: बस सर जी
0: बस प्रोग्राम बा आउरे ब्याच द कॉस्मेटिक से जरूरत हुमे नो इंशाल्लाह जमुंग द कॉस्मेटिक द प्रोडक्ट को यूज इन इंतहाब का कासिम बिया बे जमाना तपोस हुमने के पखपल बेजान लराउड़े
1: ओके सर जी ओके सर दा पहले द मोर प्रोग्राम बो सौरु
0: इंशाल्लाह उस पे रोजा नौरी कालबम के ठीक शो
1: दा
0: कब जाकी निदा करता अता सो शॉपिंग ले
1: ڈیر
0: زیادہ مننا جی ڈیر زیادہ شکریہ استاسو قاسم لوئی سڑیش

ओके जी कासिम पर दरगी की बताओ तो रियाज जनरल स्टोर नादर मार्केट दर गई और जवाहर ट्रेडर्स अल जजीरा मार्केट दर गई। इसके ट्रेडर्स पेल अपलोर यानी पेल अच्छा दुकान नंबर द्रेम शहीद मार्केट बस स्टॉप दर गई बाजार सलीम खान सर बताओ तो समझ देश ना का उसमें पाकिस्तान टोल पटोला प्रोडक्ट मिलावेगी।

0: रेडियो पैगाम 97.4 पहाड़पुर एंड रेडियो अमन 88.4
1: हुसैन से भैया सुनो जरा, करती हूँ इस गरीब में मैं आखिरी सवाल खिदमत में।
0: सामने किराम तीनों रेडियो स्टेशन से एक साथ महरमुल हराम की खसूसी नशरियात दस्तानी करबला के साथ केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से केसन स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेजबान खलील धाबे शामान।
1: प्यारे

0: एक जख्म दिल पे और भी गहरा लगा।
1: जब सहराए कर्बला में अली अकबर की आवाज गूंजी तो सबको मदीने वाले मुस्तफा की याद आ गई और खेमों से रोने की सिसकियां बुलंद होने लगी, क्योंकि सब जानते थे कि आले मोहम्मद के इस पाक घराने की ये आखिरी अजान है। वो गाजी अलमदार जो सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने भाई और अपने इमाम की हिफाजत के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए, जिनकी गैरतमंद आंखों में हुसैनी खेमों के प्यासे बच्चों के लिए तड़प और बातिल के लिए जलाल था।
0: अपने दोनों
1: एक तरफ तीन दिन की प्यास, तन्हाई और जालिमों का लाखों का लश्कर था और दूसरी तरफ हुसैन का वो इत्मीनान कल्ब और बेमिसाल सब्र था जिसने सुबह के आगाज से ही बातिल के ईवानों को हिला कर रख दिया था।

0: दामन किराम, जब 10 मुहर्रम की सुबह नमुदार हुई और इमाम अली मकाम ने अपने मुख्तसर से लश्कर की तरतीब फरमाई तो इमामत ने इल्मे हक, अल्मे हक जिसके हाथ में थामा था उसे कायनात गाजी अब्बास अलमदार समिन कहती है। अब्बास जो सिर्फ एक भाई या सिपा सलार नहीं थे बल्कि हुसैनी खेमों की आस, मासूम सकीना का मान और करबला की फिजाओं में वफा का दूसरा नाम थे।
1: परेशान हो गए
0: निग्राम अशूरा की इस पुरदर्द सुबह, जहां एक तरफ प्यास और तन्हाई का पहरा था, वहां गाजी अब्बास का वजूद अहले बैत के खेमों के लिए इत्मीनान कल्ब था। तारीख गवाह है कि जब तक अब्बास का अलम लहराता रहा, किसी जालिम की जुरत ना हुई कि वो मुख्तराते असमत अहले बैत की खवातीन की तरफ मैली आंख से देख भी सके।
1: छिद गया अकबर हुए
0: सलाम। अब्बास वो शुजा थे जिनकी हैबत से फिरात का पानी भी कांपता था, लेकिन जब दरिया पर पहुंचे तो अपने सूखे होंठों पर पानी की एक बूंद भी सजाना गवारा ना किया, क्योंकि खेमों में इमाम हुसैन और मासूम बच्चे प्यासे थे। उन्होंने अपने बाजू कटा दिए मगर वफा का परचम सरनगू ना होने दिया।

0: जी सामिन ग्राम, और हुर बिन यजीद रिहाई का नाम आपने दास्तान के
1: हजारों
0: दरमियान में सुना कि जब हजरत इमाम हुसैन का काफिला जो है मक्का से कूफा की तरफ रवाना होता है, तो यजीद को जैसे इतला मिलती है कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिला के साथ कूफा का रुख कर रहे हैं, क्योंकि कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन से ये वादे कर लिए थे कि जिस तरीके से आप यजीद की बैत नहीं कर रहे और यजीद को बरहक खलीफा नहीं मान रहे, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी आपकी तायीद करते हैं और आपके साथ हैं, आप ही हमारे आका हैं, आप ही हमारे खलीफा हैं और हम किसी और को खलीफा नहीं मानेंगे। उन्होंने 18,000 के करीब खतूत लिखे इमाम हुसैन को।
2: सुल्तान हुसैन जान औलिया हुसैन जान औलिया हुसैन जान औलिया हुसैन जान।
0: तो उसमें जब यजीद भेजता है कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ आ रहे हैं, और उन्हें पता था कि अगर इमाम हुसैन कूफा पहुंच जाते हैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा लोग उनके साथ मिल जाएंगे और ये तहरीक चल पड़ेगी और फिर यजीद की हुकूमत को खत्म करने के लिए ये तहरीक काफी होगी। तो उन्होंने ये प्लान किया कि किसी भी तरीके से इमाम हुसैन को जो है कूफा के अंदर दाखिल नहीं होने देना, ना ही कूफा के अंदर ना ही मदीना वापस जाने देना है। तो दरमियान में जो है जो करबला का मकाम था वहां पर इमाम हुसैन को रोक लिया जाता है। लेकिन वो सबसे पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन का काफिला रोका होता है उसका नाम था हुर बिन यजीद रिहाई।
2: रसूल के चारों तरफ
0: वो जिसने सबसे पहला रास्ता रोका था और ये लश्कर यजीदी में पहला बंदा था जिसका दिल अल्लाह ताला ने मोड़ लिया था, और जहन्नम में जाने से एक दिन कबल जो है ये शख्स जन्नत का हकदार हो गया।
1: हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता।
0: जी सामने किराम, हुर करबला का वो मुसाफिर जो लश्कर यजीद का सिपा सलार बनकर आया था, मगर शहर अशूर उसने दुनिया की बादशाही को टुकरा कर हुसैन के कदमों में मौत को चुन लिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने चंद लम्हों में जहन्नम के किनारे से जन्नत का फासला तय कर लिया था।
2: हुसैन
0: किराम, हजरत हुर का वाकया करबला की तारीख का वो मोड़ है जो इंसान को हिला कर रख देता है और ये बताता है कि इंसान का एक दुरुस्त फैसला उसे किस तरह जिल्लत की अता गहराइयों से उठाकर अजमत इंसानियत के आला तरीन मुकाम पर पहुंचा सकता है।
2: जान औलिया हुसैन जान औलिया हुसैन अल्लाह की।
0: हमारे ग्राम हुर वो नामवर और मुअज्ज़ज़ जंगजू था जिसे इब्ने ज़ियाद ने 1,000 लश्कर देकर इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए भेजा था। जब हुर का लश्कर तपते सहरा में प्यास से निडाल होकर मौला हुसैन के सामने पहुंचा तो रहमत हुसैनी का जलवा देखिए इमाम अली मकाम ने ना सिर्फ हुर और उसके तमाम फौजियों को पानी पिलाया बल्कि उनके घोड़ों को भी अपने मुबारक हाथों से सैराब किया। ये हुर के दिल पर हुसैनी इखलाक का पहला नक्श था।
2: बने जब करबला में आए दुलारे बतूल के।
0: अमेरिका 10 मुहर्रम की सुबह जब जंग के नगारे बज चुके थे तो हुर ने देखा कि उमर बिन साद का लश्कर रसूलुल्लाह के नवासे के खून का प्यासा बन चुका है और अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही है। उसके सामने एक तरफ यजीद की दी हुई दौलत, हुकूमत, मर्तबा और दुनिया थी और दूसरी तरफ हुसैन की गुर्बत, तन्हाई और यकीनी शहादत थी। इकराम, हुर का जिस्म कांपने लगा। उसके एक साथी ने हैरत से पूछा, हुर तुम तो कूफे के सबसे बहादुर सवार हो, मैंने कभी किसी जंग में तुम्हें यूं कांपते हुए नहीं देखा, आज तुम्हें क्या हो गया है। हुर ने वो तारीखी जुमला कहा जो क्यामत तक के लिए मशलेरा बन गया, खुदा की कसम मैं अपने आप को आज जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा हुआ पा रहा हूँ। खुदा की कसम मैं जन्नत के मुकाबले में किसी चीज को नहीं चुन सकता, चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए।

0: श्यामल ग्राम मुहूर ने अपने घोड़े का रुख मोड़ दिया और उसे हुसैनी खेमों की तरफ दौड़ा दिया। शर्मिंदगी और निदामत का ये आलम था कि अपनी ढाल को उल्टा कर लिया, सर को झुका लिया और दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। जब इमाम हुसैन के करीब पहुंचे तो घोड़े से गिरे, आंखों से आंसू जारी थे और हुर बोले, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं वही खताकार हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था, जिसने आपके पाक बच्चों को इस तपते सहरा में महसूर किया था। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या मेरे लिए कोई माफी है?
1: ये लाल हमसे पहले ही जन्नत में जाएंगे। शब्बीर इतना कह के परेशान।
0: सामिन इकराम, मज़लूम करबला जो कायनात के लिए सरापा रहमत हैं, उन्होंने आगे बढ़कर हुर को गले से लगा लिया। इमाम ने फरमाया, हुर अपना सर उठाओ। हुर अपना सर उठाओ, खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली
1: है। असगर अली भी राही बागेरम हुए।
0: सामने किराम, हुर ने मौला से इसरार किया कि चूंकि मैं आपके सामने सबसे पहले वाला खताकार हूँ जिसने आपको रोका, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सबसे पहले मैदान में जाकर अपनी जान आपके लिए कुर्बान कर दूं। इजाजत मिलते ही सामिन इकराम हुर मैदान जंग में उतरे और बातिल के खिलाफ ऐसी शुजात दिखाई कि कूफा का लश्कर दंग रह गया।
1: अफसोस करबला में पयंबर का घर लुटा।
0: सामिन इकराम, जब हुर शदीद जख्मी होकर खाक पर गिरे तो इमाम हुसैन खुद उनके लाशे पर पहुंचे।
1: दर्द से
0: मौला ने अपने जानों पर उनका सर मुबारक रखा, उनके चेहरे से खून और खाक को साफ किया और अपने रुमाल से उनके सर के जख्म को बांधते हुए फरमाया, हुर तू वैसा ही आजाद हुर है जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था। तू दुनिया में भी आजाद है और तू आखरत में भी सुरखरू है।

0: गए।
1: जी सामी निक्राम, आप अपने शहर के रेडियो से अगर टांग में मौजूद हैं तो रेडियो अमन, डिरेस्मिल खान में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91, और अगर आप पहाड़पुर में मौजूद हैं तो आप रेडियो पैगाम 97.4 से हमारा योम अशूरा का खसूसी प्रोग्राम सुन रहे हैं। और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामून है नेशनल पाकिस्तान का। 10 मुहर्रम हराम की वो तपती हुई दोपहर, जब करबला की रेत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक खून से सुर्ख हो चुकी थी, जब अब्बास के बाजू कट चुके थे, अकबर की जवानी पर बर्छी चल चुकी थी और कासिम की लाश पामाल हो चुकी थी, जब कोई यार और मददगार ना रहा तो गरीब वतन मजलूम करबला, इमाम हुसैन ने अपने जख्मी और निढाल बदन के साथ प्यास की शिद्दत से खुश जुबान को मुंह पे फेरा और इमाम हुज्जत के लिए लश्कर अदा के सामने आकर खड़े हो गए।
0: बच्चों का दुख,
1: आपने अपने नाना का अमामा सर पर सजाया, जुल्फकार हैदरी को हमाइल किया और यजीदी फौज की ठाटे मारते हुए समंदर के सामने वो तारीखी और रिक्कत अमेज खुतबा दिया जिसका एक लफ्ज आज भी पत्थर दिलों को रुला देता है। वो आखिरी खुतबा जो इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर को दिया, आइए आपको उस खुतबे के
0: रसूल के चारों
1: कुछ लाइन आपकी समातों की नजर करते हैं।
0: फौज शाम ने ये जुल्म सैयदों पे किया, फौज शाम ने।
1: हम कहते हैं कि इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज में पुकारा, अरे लोगों जल्दी ना करो, जरा मेरी बात सुन लो, मुझ पे लाजिम है कि मैं तुम्हें हक की नसीहत करूं और अपने आने का सबब बता दूं। अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरा उजर कबूल कर लो और मुझसे इंसाफ करो तो तुम खुशबख्त हो जाओगे और मुझ पर तुम्हारा कोई अताब नहीं रहेगा, और अगर तुम मेरा उजर कबूल नहीं करना चाहते तो तुम सब मिलकर अपने बुतों समेत मुझ पर टूट पड़ो और मुझे मोहलत ना दो। यकीनन मेरा कारसाज वो अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की है और वही सालिहीन का रब है।
0: या हुसैन बने अली, ज़ैनब ने जब निगाहों से देखा।
1: सामने क़राम कहते हैं कि इमाम हुसैन के इस ललकार को, इस बुलंद आवाज को सुनकर एक लम्हे के लिए करबला के मैदान में खामोशी छा गई। यजीदी लश्कर के हजारों सिपाही सकते में आ गए। इमाम ने उनके जमीरों को झंझोड़ने के लिए अपने नसब का भी जिक्र कर दिया, याद दिलाया कि यजीदी लश्कर मैं हूं कौन, तुम्हारे सामने कौन है।
0: शेरे खुदा के लाल नवासे रसूल के चारों तरफ से घेर लिया फौज शाम।
1: अमरीकी इमाम हुसैन ने कहा, आए लोगो अपने गुरबानों में झांको, अपने गिरबानों में झांको, अपने दिलों से पूछो और जरा गौर करो, क्या तुम्हारे लिए मेरा खून बहाना और मेरी हुर्मत को पामाल करना जायज है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं उस अली का बेटा नहीं हूँ जो सबसे पहले ईमान लाए? क्या सैयदुल शहदा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे वालिद के चचा नहीं थे? क्या जाफर तैयार मेरे चचा नहीं थे जिन्हें जन्नत में प्रवास के लिए पर अता हुए? क्या तुम्हें अल्लाह के रसूल का वो कौल याद नहीं है जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं? अगर तुम मेरी इस बात को सच मानते हो और खुदा की कसम ये सच है तो बताओ मेरे खून के प्यासे क्यों हो गए हो, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो आज भी तुम्हारे दरमियान सामने ग्राम ये लफ्ज सुनिएगा इमाम हुसैन का कि क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मेरी बातों को अगर तुम सच नहीं मानते हो तो आज भी तुम्हारे दरमियान जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह और अंस बिन मालिक जैसे जय्यद सहाबा कराम मौजूद हैं। जाओ उनसे जाके पूछ लो हुसैन कौन है।

0: मोहम्मद
1: आप इमाम हुसैन जब लश्कर यजीदी को ये पैगाम दे चुके तो उसके बाद उन्होंने दूसरा काम किया और वो काम कूफा वालों की बेवफाई का शिकवा किया और कहा कि भाई मैं तो खुद नहीं आया यहाँ, मुझे तो तुम लोगों ने बुलाया था। और इमाम हुसैन उन लोगों में से जो 18,000 खतूत लिखे गए थे इमाम हुसैन को अपनी मदद की तायद करने के लिए, उनमें से कुछ लोगों के नाम लिए और कहा आए शब्द बिन रबी,
0: खुदा के
1: आए हजार बिन अबजर, आए कैस बिन अशद, क्या तुम लोगों ने मुझे खत लिखकर नहीं बुलाया था?
0: ये जुल्म सैयदों पे
1: के करबला के बाग सरसब्ज हो चुके हैं, फल पक चुके हैं और आप अपने लश्कर तैयार के पास आ जाइए, यानी कि हम मुकम्मल तौर पर आपकी मदद के लिए तैयार हैं। कहते हैं, तारीख लिखती है कि उसी लश्कर

0: कलम हो।
1: इमाम हुसैन ने जब देखा कि अब ये किसी सूरत मानने वाले नहीं हैं, इनके दिल पत्थर हो चुके हैं, इनके कान बंद हो चुके हैं, लालच और आरजी नाम के लिए ये कुछ भी सुनना गवारा नहीं कर रहे और ये पैरवी करेंगे तो सिर्फ यजीद के हुक्म।
0: शहादत हुसैन की पढ़ता हूँ।
1: आपने आपले सलाम ने मक्तल की तपती रेत पर खड़े होकर दाएं देखा बाएं देखा, अब्बास की जगह खाली थी, अकबर का लाशा दूर पड़ा था।
0: या हुसैन बने अली, जब कर्बला में आए दुलारे बतूल के शेरे खुदा।
1: गरीबे कर्बला ने कायनात की सबसे मजलूमाना आवाज बुलंद की, जो आज भी फिजाए आलम में गूंज रही है।
0: शाम
1: हल मिन नासिरिन यंसुरना,
0: दों पे किया
1: क्या कोई है जो हमारी मदद को आए। और आवाज लगाई, क्या है कोई जो इस गरीब वतन की फरियाद को पूछे। सलाम-ए-किराम, जब खैमों से बीबियों और बच्चों के रोने की आवाजें आईं तो इमाम तड़प गए हैं, अपनी तलवार म्यान से निकाली और तन तनहा लश्कर की तरफ बढ़ने लगे।
0: एक जख्म दिल पे और भी गहरा,
1: क़यामत तक के लिए हक व बातिल की लकीर।

0: तन्हा महसूस कर रहे थे,
1: बल्कि
0: तन्हा रह गए थे। चारों तरफ दुश्मनों का खून खार नरगा था और खेमों में प्यास से बच्चों की सिसकियां। ये वो वक्त था जब तारीख इंसानियत का सबसे रिक्कत अंगेज और जिगर पाश मंजर सामने आया।
1: बाजू कलम हुए
0: इमाम आली मकाम का अपने अहले हरम से आखिरी अलविदा।

0: सब कांप उठे।
1: जी जनाब, एक आरजी सफर के लिए भी जब कोई किसी को रुख्सत करता है 20 दिन के लिए या 40 दिन के लिए, तो अहले खाना स्पेशली जो खवातीन होती हैं उनका सब्र नहीं हो रहा था और वो रो रही होती है। अगरचे उम्रे पर भी भेज रहे हो तो आपने अक्सर अपने खानदानों के अंदर ऐसा देखा होगा, हालांकि वो रुख्सत जो होती है वो 20 दिन की होती है और इतने मुकद्दस मकाम के ऊपर जाने की होती है, लेकिन फिर भी बच्चे और खवातीन जो है अपने प्यारे की उस मुख्तसर सी जुदाई को, जो कि वो एक आला मकाम पर जा रहे हैं जहाँ से उनकी इज्जत में इजाफा होना है, लेकिन फिर भी खवातीन से जो है और बच्चों से वो जुदाई जो है बर्दाश्त नहीं हो रही। जब आपका भाई जा रहा हो, आपका बेटा जा रहा हो या आपके घर वाला खामन जा रहा हो, तो उनसे वो एक वक्ती जो जुदाई है ना, उसको भी सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये वो वक्त था जिसको तारीख ने कह दिया कि इमाम हुसैन कब खैमे की तरफ आते हैं, और इस वक्त जो है खवातीन खैमों में मौजूद हैं, मर्द तो सारे शहीद हो चुके हैं, चाहे भतीजे थे, चाहे भांजे थे, चाहे भाई थे, चाहे असहाब थे, अब मर्दों में कोई नहीं बचा सिवाय एक इमाम जैनुल आबिदीन के, जो कि शदीद बीमारी की हालत में है।
2: एक जख्म दिल पे और भी गहरा लगा।
1: तो कहते हैं कि इमाम हुसैन खैमे के दरवाजे पर आते हैं और नहायत सोजो गुदाज में आवाज देती है, या जैनब, या उम्मे कुलसूम, या रुकैया, या सकीना, अलैकुम मिन्नी सलाम, तुम सब पर मेरी तरफ से आखिरी सलाम हो।

0: आखरी सवाल।
1: विक्रम, ये सुनते ही खैमों में एक कोहराम समझ गया। अहले बैत अतहार की बीबियां जान गईं कि अब दाइमी जुदाई का वक्त आ गया है। सानिय जहरा सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैह तड़प कर आगे बढ़ी। इमाम ने अपनी प्यारी बहन को तसल्ली दी, दस्त शफकत सर पर रखा और वो तमाम अजीम जिम्मेदारियां सौंपी बीबी जैनब को कि जो शहादत के बाद इस शेर दिल खातून को निभानी थी। इमाम ने फरमाया, बहन मेरे बाद सबर का दामन हाथ से ना छोड़ना और खैमों के जलने और कैदो बंद की सौबतों में उस्वाए शब्बीरी को हमेशा जिंदा रखना।
0: इज्जत भी हमने दी इनको शहीद होने की इज्जत।
1: इमाम खैमे के उस हिस्से में आते हैं बीबियों से रुख्सत लेने के बाद, उस हिस्से में आते हैं जहां सैयद साजिदीन हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बुखार की शिद्दत से निढाल थे।
0: शब्बीर
1: इमाम ने उन्हें सीने से लगाया, इमामत के असरार और रमूज और अमानतें सपोर्ट की और उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया।

0: लेकिन इस अलविदा का सबसे दर्दनाक लम्हा वो था जब इमाम की लाडली और कमसिन बेटी जनाबे सकीना अपने बाबा के कदमों से लिपट गई थी।
1: बाजू कलम हुए, कासिम का सीना छिद गया, अकबर हुए शहीद।
0: बाबा क्या आप भी हमें मौत के हवाले करके जा रहे हैं?
1: शहीद सहरा का लाल लुट गया।
0: इमाम ने अपनी नन्ही जान को आगोश में ले लिया, उनके रुखसार उसके गालों से आंसू पहुंचे और फरमाया, मेरी बच्ची
1: करबला
0: मेरे बाद तुझे बहुत रोना है, अभी से अपने इन मोतियों को ना बहा, तेरा रोना मेरे दिल को जख्मी करता है।

0: उदास है, बच्चों का दुख है सीने में फिक्रे।
1: अमेरिकराम, अहले हरम को खुदा के सपोर्ट करने के बाद इमाम मजलूम अपने वफादार घोड़े जुलजना पर सवार होते।
0: अजीब है शेरे खुदा के शेर की हालत, अजीब है वो खूब जान।
1: इस वक्त आसमान पर इस मजलूमियत पर खून के आंसू रो रहा था, सवार हुए। इस वक्त आसमान भी इस मजलूमियत पर खून के आंसू रो रहा था। आपने यजीदी लश्कर की तरफ रुख किया और अतमाम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। आपने याद दिलाया कि मैं किसी का नवासा हूँ, जो मैंने आपको इससे पहले सारा जो बताया है। लेकिन उसके बाद आखिरी जो इमाम हुसैन की सवारी है, यानी कि जो जिसके ऊपर वो सवारी करते थे, जो उनके ख़ानदान का एक हिस्सा था, और जो सवारी होती है आपके घर के अंदर, अगरचे एक कुत्ता भी हो ना, एक कुत्ता भी हो तो वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है और उसका उन्स जो है वो आपके साथ बढ़ जाता है, घर का एक हिस्सा ही होता है। तो बेसिकली जुलजना भी इमाम हुसैन के ख़ानदान का एक हिस्सा था जो सवारी के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन आज वो भी परेशान था और उसकी आंखें भी नम थी।
0: तरफ से घेर लिया फौज शाम ने, ये जुल्म सैयदों पे किया फौज शाम ने।

0: यार
1: सिदना, इमाम हुसैन की लाडली बेटी, और जो लाडली बेटियां होती है ना, वो उनकी एक जिद होती है आखिर तक जो है, अगर उनको साथ में कहाँ कहीं ना ले जाया जाए ना, तो वो जिद करती है। तो क्या जिद था सकीना का भी? यही जिद था कि मेरे बाबा ना जाए। छोटी सी थी, उनको क्या पता सब्र क्या है, क्या करना है। लेकिन वो अपनी अकल के मुताबिक हर वो फेल कर रही थी जो 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची जो है अब वो करती है, और अपनी जिद पूरी करने की कोशिश करती है कि जैसे कह रही थी कि बाबा हमें छोड़ कर ना जाए, यानी कि वो बाबा को जाने नहीं दे रही थी किसी भी तरीके से। तो ये आखिरी अलविदा की जो वाकियात हैं जनाब, उसमें कहते हैं कि जब इमाम हुसैन ने देखा कि बार बार कहने पर जुलझना नहीं चल रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्होंने कहते हैं कि घोड़े ने अपनी आंखों से इशारा किया इमाम हुसैन को कि नीचे देखें। तो जैसे इमाम हुसैन की नीचे की तरफ निगाह गई, तो वहां पर निगाह देकर मजलूम करबला का दिल और छलनी हो गया।
0: जख्म दिल पे और भी गहरा लगा दिया, दरिया पे भी लाइनों ने पहरा लगा दिया।
1: इमाम हुसैन की 4 साल की लाडली बेटी शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैह ने जुलजनाह के पैरों को तोड़कर, जुलजनाह के पैरों यानी कि सुमो को अपने नन्हे हाथों में थाम रखा था,
0: आकर
1: और
0: का
1: वो रो रो के कह रही थी, जुलजनाह मेरे बाबा को मत मक्तल की तरफ ना ला ना लेके जाओ। आज सुबह से जो भी इस मैदान में गया है वो लौट कर नहीं आया।
0: लेके आई हूँ,
1: हमारे अली अकबर नहीं आए, हमारे चचा अब्बास नहीं आए,
0: तुम्हारी बहन
1: मेरे बाबा को भी हमसे मत छीन।
0: माना कि ये तुम्हारी बहन का करार है, प्यारे हुसैन तुम पे ये बच्चे निसार हैं।
1: वफादार जानवर की बेबसी और जज्बात, एक मासूम बच्ची की ये फरियाद और आह बका सुनकर जुलजना की जो हालत थी, सामने कहते हैं वो देखने वाले थे, शहजादी सकीना की आवाज सुनकर जुलजना ने अपनी गर्दन को इतना नीचे झुका लिया कि उसका चेहरा मासूम सकीना के नन्हे हाथों और चेहरे के पास आ गया था।
0: इजाजत भी हमने दी इनको,
1: उसने अपने कानों को ढीला छोड़ दिया और अपने जिस्म को थोड़ा सा झुका लिया, जैसे वो शहजादी से अपनी बेबसी की माफी मांग रहा हो कि वो अल्लाह के हुक्म और इमाम की मर्जी के सामने मजबूर है।
0: इतना कह के परेशान हो गए शब्बीर, इतना कह के परेशान
1: हम
0: हो।
1: कहते हैं कि जुलजना अपने सुमो से करबला की तपती रेत को खुरचने लगा और जोर जोर से सांसें लेने लगा, जिससे इसकी बेकरारी साफ जाहिर हो रही थी।
0: या हुसैन बने अली, असगर अली भी राही बागे रम हुए।
1: जुलजना अपनी लाडली बेटी का ये जज्बाती मामला देखकर सैयद शुदा से रहा ना गया। आप घुड़ पर सवार थे, लेकिन अपनी लाडली बेटी का ये जज्बाती मामला देखकर रहना, अब फौरन घोड़े की पुश से नीचे उतर आए। उन्होंने तड़पती हुई सकीना को अपनी आगोश गोद में लिया, उसके आंसू पोंछे और उसे दिलासा दिया। इसके बाद इमाम ने जुलजना की पेशानी पे हाथ फेरा, उसे थपकियां दी और उसे अल्लाह की रजा के सामने सर तस्लीम खम करने की ताकीद दी, जिसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए तैयार
0: हुआ।
1: यही वो वफादार घोड़ा था जो मक्तल में इमाम के जख्मी होने के बाद भी आपकी हिफाजत करता रहा, और जब असर के वक्त इमाम मजलूम आखिरी सजदा में शहीद कर दिए गए, तो यही जुलजना खाली जैन और खून से लथपथ होकर जब खैमों की तरफ लौटा, तो उसकी
0: के शेर की हाल
1: हिनाहट और जमीन पर सर पटकने की आवाज ने ही बीबियों को इमाम की शहादत की खबर दी थी, जिसे सुनकर क्यामत का मंजर था।
0: करीब है।

अभी सामरिक रामासर का वक्त हो चुका था। कायनात का सूरज गुरूब होने के करीब था और फातिमा जहरा का चांद खाके करबला पर तड़प रहा था, जब मौला हुसैन जख्मों की ताब ना लाकर जुलजना की जैन से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपने रुख मुबारक किबला किया।

0: से को
1: जब तन तनहा मैदान में उतरते हैं इमाम हुसैन, कोई साथी, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई भी साथ नहीं होता। 3 दिन की प्यास, भूख और बेपनाह सिदमात के बावजूद आपने वो तारीखी खुतबा दिया जिसने बादल के लश्कर को लर्जा कर रख दिया। जब जालमों ने चारों तरफ से तीरों और तलवारों की बारिश कर दी तो इमाम मजदूम ने ऐसी शुजात दिखाई कि कूफा के सुरमा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन 3 दिन की प्यास और जिस्म पर लगने वाले सैकड़ों जख्मों, तीरों, तलवारों और नेजों के जख्म की वजह से इमाम के मुबारक जिस्म में ताकत बाकी ना रही। आपके जिस्म अतर से खून का आखिरी कतरा तक बह चुका।
0: एक जख्म दिल पे और भी गहरा लगा दिया, दरिया पे भी लड़ाई।
1: असर का वक्त हो चुका था। कायनात का सूरज गुरूब होने के करीब था और फातिमा ज़हरा का चांद खाके कर्बला पर तड़प रहा था, जब मौला हुसैन जख्मों की ताब ना लाकर जुलजना की जैन से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपने अपना रुख मुबारक किबला रू कर दिया था। कठिन वक्त में भी जब इमाम का पूरा जिस्म तीरों की वजह से छलनी था, आपकी जुबान पर सिर्फ ये कलमात थे, इलाही मैं तेरी कजा पर राजी हूँ और तेरे हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद
0: माना के।
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें क्योंकि आ गया है डॉक्टर ज़ैन हेयर ऑयल और शैम्पू।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।